सब ते ऊच ताकि सुभा बनी नानक के गुणा सुख मनी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद उतार घासे दस्खत का पातशाही दसवीं

सगवार को चांद पे गए तुम्हारे द्वार वाए गए के न जिसको बुला द्वार दो दान राज करेगा कांसा की जय न कोई ख्वार हो सुमलेंगे बजे सरन जो होए

प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार मरण विहीन दस चार लंग रूपा पार चकल देवता पार देवता जरूर दुरंत सब जगत भगवान दुरंत जस तिलक भूप प्रधान जस चार चार प्रधान जस चार चार प्रधान कलंक रूपा पार सब लोग स्वरूप दार कलंकाल कर्म विहीन सकल परम धर्म प्रवीण सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप संखंड वेद प्रताप अनुच्छेद भेद छेद मुखचाय प्रवेद भेद मुखचार गलंक भेद जय नेत निगम का हंत मुखचाय भक्त में हंत अनुभिजा अतुल प्रताप अनखंड अतुल प्रताप अनखंड अतुल प्रताप जय कीन जगत प्रसाद रचियो विचार प्यार रचियो रूप अखंड प्रताप प्रचंड जगदंड ब्रह्मांड किने जगत ब्रह्मांड किने जगत प्रसाद किने रूप अवतार अवतार जय दूत इंद्र रे पार तेरे राम सिंह तेरे चार तेरे राम कृष्ण नर सुवाल तेरे राम गुण नर सुवाल तेरे राम गुण नर सुवाल कवि सिंध बंधन केंद्र कवि सिंध बंधन केंद्र कवि माता कुमार कवि कवि सन अवतार सन अवतार कवि इंद्र बार बुहार कवि कवि राम बार चार कवि कवि चंद्र रुनार कवि राम कृष्ण चंद्र रूप सन अनु कवि कुप का अनंत कवि कुप का अनंत कवि कवि दशमिर का खान कवि सात ही सो पुराण ही सो पुराण कई अग्नहोत्र करांत कई अग्नहोत्र करांत कई युद्ध पालसने आनंद कई युद्ध पालसने आनंद कई युद्ध कलम करांत कमान निकाल करांत कमी प्रदान अपार कमी प्रदान दार कलम उतार कम अग्नहोत्र अनुप कम न्याय राज प्रमुख कम समय समर्पित कम वेदिशों समर्पित वेदिशों समर्पित कई देश देश फिरांत कई देश और देश फिरांत कई जन और जहां कम सर्जन परताप कल परताप कम बास करने करांत कम बास में सकांत कम रसा परम सकांत कम राजी दुदार कम राजी दुदार कम रुगरत परम कम रंगरत परम कम सिक्रम सरुलंग कम सिक्रम रूप कम रुग कई ब्रह्म वेद रटंत कई ब्रह्म नाम चरंत कई राजपनास निरंत वेद रूप दास रूप दास सब कर्म को कृत जान सब धर्म ने को कृत जान सब

नरंग है न संग है न दो है न सदा है न स्वर है न दो है न
है न जा है न रा है न संग है न चार है न रा है न सात है न सांग है मत है न जा है न संग है न रा है न जा है न चोर है न सा है न सा को मार है सा न ने है न के है न दे को बने है न सिर है न सिर को सर लाव मिला है न सिर है न जब है न लाव है न चंद्र को सरज पर है न राग है न रंग है न रे है न राग है न रंग है न रे है न रूप है न चंद्र है न मंत्र है न चंद्र को बनाओ है छल है न चित्र है को बनाओ तो मिलाओ है न चंद्र है न राग है मिलाओ है न रूप है न रेग है न रम है न तरुप है न जरी है अभेक है न तरम है न जरम है अभेक है न तात है न मात है अचाल खंड रूप है अचेत है अखेद है न रूप है न भूत है अभेद है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अपवित्र है अपनी है करीम है कुरांज है अकाल है अपाल है ख्याल है अखाल है रोग है न रोग है अभेद है न भोग है सुख है न भेद है न भेद है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है न संग है न सात है प्रमाद है पवित्र है न अतीत है प्रतोज है ब्राह्म है न अतीत है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम न देव है न दर्द है न नर को सर्वदेव है न चल है न चित्र है मुझे तू के विभूत है न चित्र है न चित्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न दर्द है न लोभ न द्वेष है न द्रोह है न प्रेम है न काल है न काल है सदी दयाल काल है अनंत है असंत है अनंत है

प्रतापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मन अग्नि से प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लवला गी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दऊ चलय राख आप मुहे और ना दलय तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान

ये हो जग सच्चे की एक कोठड़ी सच्चे का चुवा इतना हुक्म सुनाए इतना हुक्म करे बड़ा सुखना पाने कटले कना मार चनवा।

सचता पर जाने जा सुख सच ले दया जाने जी के किच पुन दान करे सचता पर जाने जा तंत्र करने वा सत्य कर बहरे करने वा।